0: डुङ्गा गीत पुरुषले उठाउने र त्यसलाई पछ्याउँदै सामूहिक रूपमा गाउने परम्परा पनि छ। मादलको तालसँगै नाच प्रस्तुत गरिन्छ। थारू अगुवा प्रमोद थारू।
1: पुर्खा पुर्खन से सृजित हुई हमार दसिया दसैं के उपलक्ष्य में हमने के दसैं जो आए गिल्ली हमने के गांव गांव घर घर आयला तो उहे उपलक्ष्य में उहे हमने के करे मनोरंजन में आज हमने के आज कोलपुर 15 झंडावा गांव करे कोलपुर 9 झंडावा गांव जो यहाँ बुद्धिजीवी आटाएं मृदंगिया बाटाएं नचनिया बाटाएं ढेर से ढेर गाँव मना यहाँ उपस्थित होकर आज हमने यहाँ समग्र में हमने के सामूहिक नाच करती ओकर बाद में आज हमने एक खुशहाली आई थी हमन के घर घर में हमन के दसई आई था ओकर बाद में खास करे हमन के सबसे भारी त्यौहार सबसे करे खास दसई लावा लावा लुगरा लगैना लावा लावा मीठ मीठ खैना है ना सुअर के शिकार खैना जिगरे जिगरे के साध ना हो ओकरे शिकार खैना दारू पीना और जिगरे साध आ रही ओकरे पूरी गुलगुला बढ़िया खैना दिन हो नहीं ते कारण से हमन के थारून के एकदम खुशहाली कैसे कि साल भर काम के लिए ये चाहे हमन के करे आराम के दिन में वे कारण से खास आराम के ना मनोरंजन के ना दिन हमन के हो वो हमन के समाज में हमन के रीति रिवाज में 12 महीना रहा मगर 12 महीना में मगर 13 किस्म के गीत बा ये कारण से आज हमने दसई में मेर मेर के
0: कस्तो मादल बजाउँदा
1: बहुत मजा मैं तो खास करे नहीं मैं छोटी मोटी नोट नहीं बजाऊ मगर आज है ना मेन बरगड़ी समरक्षक बनाए तो एक मंद्रा बजाए फिर सीख लूर बाद में गीत गाए फिर सीखना है एम फिर बहुत बहुत बढ़िया बा जैसे गीते का बाकी यहाँ ढेर से ढेर करे बाबाई यहाँ करे साकिर गली गली बा तो हमारे पुरखे गीत फिर से लड़के

थारू लिपि में हमने करे अपन थारू लिपि में नहीं पढ़ पैली, मगर तब फिर हमने सुबह के अध्ययन करती हमने करे थारू लिपि में पढ़े कोशिश करती गाना गीत ओकर बाद में फिर अस्ते का कि अस्ते गीत रह कि हमन के संस्कार हमन के लावा आए लावा भोज भाजरे नहीं तो कहीं जो कि दूल्ही बोल रहे हैं ना।

छिनछिनमै हाँस्न मन लाग्छ, छिनछिनमै रुन मन लाग्छ। उदय सोताङले गाउनु भयो श्रोता यो मिठो गीतलाई। अब आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरभाव जानकारी तपाईँलाई दिन गइरहेको छु श्रोता। युएस डलरबाट सुरु गरौँ। एकको खरिद दर 153 रुपियाँ 98 पैसा, बिक्री दर 154 रुपियाँ 58 पैसा। युरो एकको खरिद दर 173 रुपियाँ 17 पैसा, बिक्री दर 173 रुपियाँ 84 पैसा। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर 203 रुपियाँ 95 पैसा, बिक्री दर 204 रुपियाँ 75 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिद दर 185 रुपियाँ 24 पैसा, बिक्री दर 185 रुपियाँ 96 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर 107 रुपियाँ 32 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 74 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिद दर 107 रुपियाँ 91 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 33 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर 120 रुपियाँ 44 पैसा, बिक्री दर 120 रुपियाँ 91 पैसा। जापानिज येन 10 खरिद दर 9 रुपियाँ 73 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 77 पैसा। चाइनिज युआन एकको खरिद दर 22 रुपियाँ 97 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 6 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 2 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 18 पैसा। कतारी रियाल एकको खरिद दर 42 रुपियाँ 24 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 41 पैसा। थाई भाट एकको खरिद दर 4 रुपियाँ 58 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 60 पैसा। युएई दिरहाम एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 93 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 9 पैसा। साउथ कोरियन वन 100 खरिद दर 11 रुपियाँ 50 पैसा, बिक्री दर 11 रुपियाँ 55 पैसा। मलेसियन रिङ्गित एकको खरिद दर 37 रुपियाँ 69 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 84 पैसा। स्वेडिस क्रोनर एकको खरिद दर 15 रुपियाँ 39 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 45 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिद दर 23 रुपियाँ 17 पैसा र बिक्री दर 23 रुपियाँ 26 पैसा। कुवेती दिनार एकको खरिद दर 469 रुपियाँ 69 पैसा, बिक्री दर 501 रुपियाँ 64 पैसा। बहराइन दिनार एकको खरिद दर 408 रुपियाँ 41 पैसा, बिक्री दर 410 रुपियाँ। र अन्तमा ओमानी रियाल एकको खरिद दर 395 रुपियाँ, बिक्री दर 401 रुपियाँ 51 पैसा। हजुर, सुन्नुभयो आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरभाव पुरा भयो। हजुर, अब गीत सुन्नतर्फ लागौँ। हेनी बेकरले गाउनुभएको छ यो गीतलाई सधैँभरि।